भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा

रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से सुनो वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीओ का नाम हरि हरन की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनने वालों भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शंकर शिव गोविंद के आवास में, ये सुंदर सा भजन आप प्रोग्राम

इन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में सुरेश वटकर जी की ओर, सुंदर भजन जो प्रोग्राम में आपकी बार पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुरेश वतकर के आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गणेश पाठक जी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश।

अभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गणेश पाठक जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश की गए। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या तो कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है दुनिया की कोने को।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है ये भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अनूप जलोटा जी की आवाज में पेश की गई है।

रेडियो वेव्स में इसके जरिए सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी सुनने वालों। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो वेव्स पे इसका पूरा और पूरा टीम की तरफ से हमारी तरफ से हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। इसी तरह से प्रोग्राम में आखिरी भजन पेश हुआ है और इसी भजन के साथ भी भजन यात्रा का प्रोग्राम बस समाप्त होने पर आ गए है। आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter de grootste met de nieuwste collectie lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kameez, dhoti pakjes, kurta pajama. Exclusieve kleding voor dulha en dulha.

अब आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

हम के आवास में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम

की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 62 66 11।

hier en dan. आज भी बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर उत्तराखंड से, हॉलैंड देश से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी सालों से। राहत फतेह अली खान एंड हर्षदीप की आवाज में हटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का नाम।

चुका है, 6:09 स्टूडियो टाइट हो चुका है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज सोमवार का दिन है, 11 मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, धूप ही धूप का मौसम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सर्दी सा मौसम है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो सर्दी सा मौसम है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। बस इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते

चलिए प्रोग्राम में पहला गाना की ओर, पहला गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है और खास तौर पर हमारी तरफ से आपके लिए, आप जो हमेशा हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, हमेशा स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, तो आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चलते हैं प्रोग्राम में पहला गाना की ओर, मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। काफी दिनों के बाद ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, मोहम्मद रफी एंड नंदा की आवाज में। गाना का बोल है।

फिल्म का नाम जब जब भूल खिले, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज में आपकी सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सोमवार का दिन 11 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार रवीन। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, रेडियो SBS का ऐप कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी जोर तोर से स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले गाना जो पेश किया जा रहा है किशोर एनाशा जी की आवाज में,

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो में थे। गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए। मोहम्मद रफी एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म जीने की राह, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

गिरा फिल्म का नाम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 5 मिनट बाकी है सुबह 9:30 बजे में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आने वाले रविवार चौबीस तारीख मई सोंदा 24 मई जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडाम आहोई में। बस इन दिनों टिकट जो है काफी जोर तोर से बिक रहा है जुबिन नौटियाल का। आने वाले सोंदा 24 मई मिलकर देखेंगे जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट इन रोटरडाम आहोई। अपना टिकट जरूर आप ऑनलाइन खरीदिए iStripTickets.com।

0: को ले चलेंगे किशोर और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जेवल थीफ। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611 इसी तार की नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं।
1: हम आज अपने पीछे
0: जीवल थी फिल्म कर

पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। जानवर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 6 मिनट ओवर 2:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का कंटूर का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। 24 uur per dag ये टेलीफोन नंबर बराबर होता है जिस पर आप सभी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर आपको फरमाइशी देना है, फरमाइशी जो है सिर्फ रेडियो SBS की जरिए सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है, 5 यूरो पर फरमाइश। 5 यूरो पर फरमाइश और लेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर ईटरिंग इज द प्राइस 5 यूरो पर फरमाइश। विवाह की फरमाइश हुआ, शादी, सालगिरह, जन्मदिन या बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है, आप फरमाइश देना चाहेंगे सस्ती दामों में, आपकी तमाम फरमाइश पेश किया जा रहा है 5 यूरो पर फरमाइश। और साथ ही साथ ये सर्विस भी आपको दिया जा रहा है कि फरमाइश के बाद आपकी मेल में एक डाउनलोड लिंक भेजा जाता है, तो पूरा के पूरा फरमाइश जो है घर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फरमाइश को आप घर पर पूरा फैमिली के साथ, पूरा परिवार के साथ आप फिर से सुन सकते हैं। सर्फस ही सर्फस महंगाई की जमाना में सिर्फ रेडियो SBS ये कर सकता है। अलमीर दान फिर तक यार 40 साल से ज्यादा हॉलैंडीज के अंदर लाइफ फनाउट हार्ट फॉर नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। दसरी फरमाई से लेकिन आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में पेश किया जा रहा है। मृत्यु समाचार हुआ, मौत की खबर के लिए भी जरूर आप रेडियो SBS से कॉन्टेक्ट कीजिए। अब ऐसे मेल भी आप कर सकते हैं या तो रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं, और वो भी रेडियो SBS का खास वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl की जरिए। 24 पर दाग हमारा मेल, हमारा रेडियो SBS का ऐप जो है बराबर होता है। वैसे रात्रि के वक्त में ही काफी सुनने वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप पर होते हैं, आते होते हैं, हंसी मजाक होते रहते हैं। उनसे ऐप रेडियो SBS ऐप इस 24 पर दाग बराबर। चलिए प्रोग्राम में एक सुनने वालों है जो अभी अभी तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मजाक भी हुए हैं और एक गाना की गुजारिश किया है। चलिए मिलकर सुनते हैं किशोर एंड आशा जी की आवाज में जॉनी मेरा नाम।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में गाना पेश की गए जोनी मेरा नाम फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। ये खास गाना एक सुनने वालों बस आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से पेश की गए। आशा उम्मीद है कि गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। किशोर एन आशा की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। मॉरिशियस में हमेशा और आज भी दुष्यंत झिंगड़े हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। शुभ दिन आप सभी सुनने वालों को बस पेश कर रहे हैं दुष्यंत मॉरिशियस से और एक गाना बस आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं और पेश भी करना चाहते हैं आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। सच्चा झूठा फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और लता प्रोग्राम में

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई, और खास तौर पर मॉरिशियस से दुष्यंत जिंगरे ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए। शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर होता है 030-262-6611 और ये तार की नंबर जो है रेडियो SBS का वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। मुकेश प्रोग्राम में होगा, द माइटी मुकेश।

दम आई डी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम प्रेम नगर, द रॉकेडोल क्वीन आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम डर।

किया आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो वेस्ट में एस के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज

बस और अनुराधा पोटवल के आवास में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चले हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

पास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में गाना

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गए, मैंने दिल तुझको दिया। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त

en कमल खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई है। अब की बार मोहम्मद रफी और लता होगा। फिल्म आसपास 1980 का फिल्म है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है। मोहम्मद रफी और लता के बाद किशोर कुमार एंड लता होगा।

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में, अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने, खूबसूरत नख्मे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम झोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम हम जूलिए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया गया दिल में क्या है। तो फिल्म जिगरी दोस्त उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले किशोर एन लता की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस की जरिए किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्रेख हॉलैंडिस का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेशम लगता है लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो भी थे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस सॉन्ग दूर अखिल सचदेव एंड कॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कॉम खसोंग दूर सोनू निगम एस निधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज गजॉन्ग दो अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपति. हाँ तो फैदर मैथ जुबे नोटियाल मैथ आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

अभी अभी आपने सुना केके की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्ता इस het volgend liedje via Radio SBS किस्तों।

गुरना लो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एंड गजोंग दोर लता मंगेशकर कम्त आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

तुझमें क्या है दीवाने, खसौंदुर किशोर कुमार और लता मंगेशकर कुम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले। हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग हमरा इज इट लीचे।

0: मैं पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.